गुरु अखां बंद करके बोलो सारे जुड़ के गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु सारे बोलो

परम सम्मान योग चुको चुक अटल चवर शतर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद विच साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ अते मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी साध संगत जीओ आप सारे वड़भागी हो तनता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो आओ जो सामदे दीवाना विच सतगुरां जी दी पावन बाणी दी विचार चल रही है वह विचार आपां सांझी कर सकीए। विचार आरंभ करन तो पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो।

परमेश्वर रव रहया सब नी जाए। परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना। जिस मनुख दे राह विच केड़ा राह जेड़ा राह बुरियाई वाला राह सी जेड़ा राह विकारा वाला राह सी ओ राह परमात्मा ने रोक दिता। किस दा रोकिया? अपने प्यारियां दा रोकदा है, सारियां दा नहीं रोकदा। सारियां तुहानू तां कुल दित्ती हुंदी है। एक होर मैं गल तुहाडे नाल सांझी करां, सारियां दे नाल बड़ी समझण वाली गल है। जदों मनुख किसी नूं ज्ञान दी गल समझाए ना, वो हरेक बंदे नूं समझाउण दा जतन नहीं करता। आम बंदियां च जिहड़ी गल चलदी है, जिहड़े अपने कोई नज़दीकी हुंदा है उसदी जे किते कोई कमजोरी नजर आउंदी है उसनूं समझाउण दा जतन करदा है मनुख, वो अपने नूं समझाउण दा जतन करदा। कहिंदा दुनिया तों मैं की लैणा देणा, दुनिया तों की लैणा, भावें जिन्ने मर्जी विकार कमावे। पर जेड़ा नजदीकी होवे उसनूं फिर मनुख कहिंदा, कहिण लगे मेरे मित्रा तू मेरी गल ध्यान लगा के सुन, तू मेरा मित्र है भी तू मंदे राह ते तुरदा पिया, मंदे राह ते तुर के जिंदगी दे तू पाप कमा बैठेगा, पाप कमा बैठेगा, फल एक दिन मंदा होएगा माड़ा होएगा, ये फल तेनू भोगना पएगा। प्यारिया तू कोशिश कर इस राह ते ना चल जिस राह ते तुरदा पाया तू, भाओ मंदे राह ते ना तू तुर, ये राह छड़ दे ये मंदा है। जिहड़े परमात्मा दा गुणगान करदे ने उस परमात्मा दी सिफता करदे ने, परमात्मा भी अपने प्यारियां दे वास्ते यही कुछ करदा है। जिहड़ा विकारां वाला राह है वो राह रोक दिंदा है परमात्मा। परमेश्वर दिता बन्ना, बन्ना दा भाव बन मार दिता, राही रोक दिता, हुण राह रोक दिता ते फिर उस मनुख दे वास्ते सीधा राह रह गया, सौखा राह रह गया, चंगा राह रह गया। वो खुला है राह उहदे वास्ते भी, तेरे वास्ते ये राह है, अगे राह बंद है, उहदे च मुश्किल बहुत हैगियां, तू नहीं जाना उधर नूं, होर चलते रहन, वो पापां दा अपने किते दा फल भोगणगे पर तू नहीं जाना। एक होर मैं गल सांझी करां, जेकर कोई किसे नूं किसे दी गलती दस दे ना, उहदा कदे भी बुरा नहीं मनना चाहिदा, उहदा सगों धन्नवाद करना चाहिदा। सच्चाई है, उहदा धन्नवाद करिए भी किसे ने साडी गलती दसी असी उसनूं सुधार सकीए, ना कि उसका गुस्सा गिला करिए। पर बहुतात जदों देखण विच मिलदा है यही मिलता, भाई तुसी किसे नूं दसो ना प्यारिया तू ये गलती करता है, सच जानियो। बंदा कहिंदा भाई ये मेरे नाल लगता है, ये मेरे नाल लगता है, ये मेरी बेइज्जती करन ते तुला है, अपने आप नूं शाणा समझदा है। प्यारिया कदी विचार तां कर, तू तेनू समझाउंदा अगे बंदा जतन करदा, सारियां नूं कोई नहीं समझांदा। जिहदे नाल कुछ लगाव होवे, जिथे कुछ अपना तो होवे, उत्थे बंदा समझाउंदा जतन करदा दूजियां नूं, भाई तू समझ कर अपनी गलती नूं ठीक कर लै। ते गुरदेव पातशाह जी पंजवें पातशाह कहिंदे ने, कहिण लगे परमात्मा जी भी जिहड़े उस परमात्मा दे गुणगान करदे ने, कहिण लगे उन्हां दा जिहड़ा राह विकारा वाला उस राह नूं ही रोक दिंदे ने। परमेश्वर दित्ता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना। फिर ध्यान दिओ साध संगत जी, बड़े कमाल दी गल समझाउण दा जतन किया सतगुरां ने, भी जिहड़ा विकारा वाला राह है उस राह ते तुर के बड़े दुख बंदा भोगदा है। विकारां वाले राह ते तुर के
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਕੂਨ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਵਾਈ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਰਸਾ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਰਸਾ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਅੰਦਰ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਡੇਰਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ? ਫਿਰ

सारे पढ़ो, गज के पढ़ो, मिल के पढ़िए। गुरु रामदास महाराज की सिफत जिमें भाई सत्ता जी बलवंडा जी ने की है ना जी, हे गुरु रामदास जिन्होंने तेनों भावना करके सेविया है ना, फिर गुरु रामदास महाराज जी तू उन्हों का बेड़ा पार कर दिता है। जिन्हें तू सेविया भाव कर, जिन्होंने तेनों भावना करके सेविया है, जिन्हें तू सेविया भाव कर, सेत पार उतारिया। सारे मिलके पढ़िए गुरु रामदास महाराज की सिफत।

पाछा पिछे दुश्मन दल सतगुरु पातशाह नूं फड़न वास्ते मारन वास्ते जहरी दे नारे ला रहा। सतगुरु सचे पातशाह महाराज जी ने सरसा दे कंडे ते अपने पुत्र अजीत संघ बल्ले वेख्या। महाराज की हुक्मा वैरी उत्ते आन चढ़िया। सतगुरु कहन लगे वैरी दा रस्ता रोक लिया जाए। ओना जेर तक छातियां डाके बाबा अजीत सिंह भाई जीवन सिंह भाई उदय सिंह ने दुश्मन का मुकाबला किया जिन्ना चिर गुरु गोबिंद सिंह ने अपना नितनेम नहीं समाप्त कर लिया क्योंकि अमृत वेला हो चुका सी। संत सिंह ने आख्या महाराज जी पिछे वैरी चढ़िया आंदा अगे सरसा चढ़िया सरसा पार कर लिए ते नितनेम फिर कर लांगे। सतगुरु कहन लगे जे वेला वक्त विचारी है ता कित वेला भगत होए हो संत सिंगा मुड़के वेला नहीं लपना इथे समाधियां ला के बह जाओ महाराज खालसा शहीद हो जाएगा। सतगुरु कहन लगे फिर एदो अगे खालसे ने लेना भी की जाके ओ किहो जिहा गुरु होएगा जेड़ा अपने पुत्र नू मदाने जंग नू तोरिया होएगा ते आप उस अकाल पुरख वाहिगुरु दी उस तत्व एक मिक होया होएगा। जिस अमृत वेले असी रजाई च मूह दे के नींद खराटे मार के नगा दें ना उस अमृत वेले संभालन वास्ते मेरे पातशाह ने अपने जाना तो प्यारे पुत ते सिंह ते शहीद करवा ले पर उन्होंने अमृत वेले नहीं खुंजन दिता। इतिहास प्रेरणा स्रोत हुंदे वीरो अज ये प्रण करके जाओ कि साड़ी जिंदगी विच अमृत वेले ना गवाचे। सिख की जिंदगी जिहड़ी है ना वह अमृत वेले तो आरंभ हुंदी अमृत वेले तो। गुरबाणी दे फरमान गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम ते आवै उदम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृत सरनावै उपदेश गुरु हर हर जप जापै सब किलविख पाप दोख लै जावै फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावै बहिंदियां उठदियां हर नाम त्यावै जो सास गिरास त्याए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन पावै जिसनु दयाल होए मेरा स्वामी तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की जो आप जपै अवर है नाम जपावे। ए सिख दा जीवन है। तो सचे पातशाह महाराज जी दा परिवार इत्थे सरसा दे कंडे ते इतना खेरू खेरू हो गया जितना दिगे हुए दरख्त दे पत्तियां नूं तूफान नखेड़ दिंदा। महाराज दा परिवार तिन्ना हिस्सिआं च वंडिया गया। वड्डे साहिबजादे 40 सिंह सरसा नूं पार कर गए। छोटे साहिबजादे माता गुजरी जी दे नाल गंगू दे पिंड खेड़ी नूं तुर गए। मैं इत्थे भैणों मतावां दी गल कर लगा। गुरु महाराज दे महल माता सुंदरी जी और माता साहब देवा जी इन्हां नूं भाई मनी सिंह दिल्ली नूं लै के तुर गए। तुसीं आखोगे भी दिल्ली ते औरंगजेब दा घर ते उत्थे बंदा किस तरह महफूज रह सकदा ते साडे को जवाब सिंह इको ही आ भी जिहड़ा भाई मनी सिंह सी ना उहदे दिल्ली सहुरे सी लखी शाह बनजारा जिन्हें गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे धड़ दा संस्कार कीता सी ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸੁਗੜਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। 6 ਤੇ 7 ਪੋ ਦੀ ਵਿਚਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ 11 ਮਹੀਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸਹਿਣੀ ਔਖੀ ਆ। ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪਰਦੇਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਪਰਦੇਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਕਈ ਵਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਸਕਦੀ।

सहस तव नैन नन नैन हह तोहे कौ सहस मूरत नना एक तोहे सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोहे सब मह जोत जोत है सोए तिसदा चानन सब मह चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जो तिस पावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अन

काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधो खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे कर साधो अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर रस साधना जानिया तिन अंतर हों मैं कंडा हे ज्यो ज्यो चल है चुभै दुख पाव है जमकाल सह है सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेसर बहु सोभ खंड।

0: ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰਾਇਆ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਹਰ ਜੀਉ ਰਾਖਾ ਦੈਨ ਤੈ ਕਾਲ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਪੈਜ ਆਪੇ ਰਾਖੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਕਿਸ ਨਖੀ ਵਿਦਾਰਿਆ ਅੰਧੇ ਦਰ ਕੀ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ ਰਾਗ ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਚੌਬਦੇ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਜਨ ਸੰਤ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਗ ਲਾਏ ਨਾ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਅਰ ਭੱਜ ਸੁਰਤ ਸਮਾਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਭੱਜ ਨਾਮ ਨਰਾਏ ਨਾ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਕਰਤਾਰ ਮਤਾ ਮਸੂਰਤ ਤਾਂ ਕਿਛ ਕੀਜੈ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਆਪੇ ਹਉ ਪੂਛਨਾ ਕਿਸੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਧਿਆਈਏ ਜਿਨ ਮੇਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੂ ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਹਰ ਮੇਲੋ ਸਵਾਮੀ ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਗਤ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਤਿਨ ਕਾ ਦਰਸ ਦੇਖ ਮਨ ਬਿਗਸੈ ਖਿਨ ਖਿਨ ਤਿਨ ਕੋ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ हर हृदय जप नाम मुरारी, कृपा कृपा कर संगत, कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी, हम दासन दास कीजे पनहारी राव, तिन पत उत्तम तिन माति उत्तम, तिन पाति उत्तम जिन हृदय वसिया बनवारी, तिन की सेवा लाए हर स्वामी, तिन सिमरत गत हुए हमारी, जिन ऐसा सतगुर साध न पाया, ते हर दरगह काढ़े मारी, ते नर निंदक सोभ न पावे, तिन नाक काटे सिरजनहारी, हर आप बुलावे आपे बोले, हर आप निरंजन निरंकार निरहारी, हर जिस तू मिलै सो तुद मिलसी, जन नानक क्या ए जंत विचारी। पैरो महला चौथा, सत संगत साई हर तेरी, जित हर कीरत हर सुनै, जिन हर नाम सुनया मन पीना, तिन हम सर्वै नित चरणै, जग जीवन हर त्याय तरणै, अनेक असंख नाम हर तेरे, ना जाई जिहवात गणने राव, गुरसिख हर बोलो हर गावो, ले गुरमत हर जपने, जो उपदेश सुने गुर के राव, सो जन पावे हर सुख कणे, तन सो वंश तन सो पिता, तन सो माता जिन जन जने, जिन सास गुरास ते आया मेरा हर हर, से साची दरगे हर जन बने, हर हर अगम नाम हर तेरे, विच भगता हर तरन, नानक जन पाया मत गुरमत, जाप हर हर पार पवने। भैरो महला पंजवा, घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सगली थीत पास डार राखी, अष्टम थीत गोविंद जन्मासी, भरम भूले नर करत कर चायन, जन्म मरण ते रहत नारायण रहाउ, कर पंजीर खवायो चोर, वे जन्म न मरे न साकत ढोरा,
1: जन्म न मरे रे साकत ढोर, सगल प्राग देह लो रोनी, सो मुख जलो जित कह ठाकुर जोनी, जन्म न मरे न आवे न जाए, नानक का प्रभ रहो समाए। पैरो महला पंजवा, उठत सुखिया बैठत सुखिया, पाओ नहीं लागे जा ऐसे बुझिया, राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी रहाओ, सोए अचिंता जाग अचिंता, जहां कहां प्रभ तू वर्तनता, घर सुख वसया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुरमंत्र दृढ़ाया। पैरो महला पंजवा, वर्तना रहो ना महरम दाना, तिस सेवी जो रखे निदाना, एक गुसाई अल्हो मेरा, हिंदू तुर्क दोहा ने बेरा रहाओ, हज काबे जाओ ना तीर्थ पूजा, एको सेवी अवर ना दूजा, पूजा करो ना नवाज गुजारो, एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान, कहो कबीर एहो किया वखाना, गुरपीर मिल खुद खसम पछाना। पैरो महला पंजवा, दस मिर्गी सहजे बंध यानी, पांच मिर्ग बेदे शिव की बानी, संत संग ले चढ़ो शिकार, मृग पकड़े बिन कोर हथियार रहाओ, आखेर बिरत बहार आयो ताए, अहेरा पायो कर कह गाय मृग पकड़े कर आने हाट चुख चुख ले गए बांडे बाट एहो अहेरा कीनो दान नानक कह कर केवल नाम पैरो महला पंजवा जे सौ लोच लोच खावाया साकत हर हर चीत न आया संत जना की ले हो मते साध संग पावहो परम गते रहाओ पाथर काओ बहु नीर पवाया नह पीगै अधिक सूकाया खट शास्त्र मूर्ख सुनाया जैसे दह दिस पवन चलाया बिन कण खलहान जैसे गाहन पाया त्यो साकत ते को ना बरासाया तित ही लागा जित को लाया कहो नानक प्रभ बणत बनाया पैरो महला पंजवा जियो प्राण जिन रचियो शरीर जिन्ह उपाए तिस क्यों पीर गुर गोबिंद जी कै काम हलत पलत जाकी सद शाम रहाओ प्रभ आराधन निर्मल रीत साध संग बिनसी विपरीत मीत हीत तन नहीं पारना मीत हीत तन नह पारना तन तन मेरे नारायणा नानक बोले अमृत बाणी एक बिना दूजा नहीं जानी पैरो महला पंजवा आगे दयो पाछे नारायण मद भाग हर प्रेम रसायण प्रभु हमारे शास्त्र सौन सुख सहज आनंद ग्रह पौन रहाओ रसना नाम करन सुन जीवे प्रभ सिमर सिमर अमर थिर थीवे जन्म जन्म के दुख निवारे अनहद शब्द वजे दरबारे कर कृपा प्रभ लिए मिलाए नानक प्रभ शरणागत आए पैरो महला पंजवा कोट मनोरथ आव है हाथ जम मार्ग कै संगी पाथ गंगा जल गुरु गोबिंद नाम जोस

अपना खसम जिन आप त्याया याना पापी ओह आप पचाया प्रभ मात पिता अपने दास का रखवाला निंदक का माथा ईहा ऊहा काला जन नानक की परमेश्वर सुनी अरदास मले

दास राम जियो लागी प्रीत, निंदक की होई विपरीत। पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दुखी अपना कीता पाया। आए ना जाई रहया समाई, नानक दास हर की शरणाई। राग भैरव महला पंजवा, चौपदे घर दूजा।

ऐसा प्रभ छोड़ कर है अन सेवा, कवन बिखया रस माता। रे मन मेरे तू गोविंद पाज, अवर उपाव सगल मैं देखे, जो चितवी है तित बिगरस काज रहाओ। ठाकुर छोड़ दासी कौ सिमरह, मन मुख अंध अज्ञाना। हर की भगत कर है तिन निंद है, निगुरे पशु समाना। जियो पिंड तन तन सब प्रभ का, साकत कहते मेरा। अहं बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर पव जल फेरा। होम जग जाप तप सब संजम, तट तीरथ नहीं पाया। मिटिया आप पय सरनाई, गुरमुख नानक जगत तराया। पैरो महला पंजवा, बन मह पेख्यो तिरण मह पेख्यो, ग्रह पेख्यो उदासाए। दंड तार जट धारै पेख्यो, वर्त नेम तीर्थाए। संत संग पेख्यो मन माए, ऊब पयाल सर्ब मह पूरन, रस मंगल गुण गाए रहाओ। जोग पेख सन्यास पेख्यो, जात जंगम कापड़ाए। तपी तपी सुर मुन मह पेख्यो, नट नाटक निरताए। चहो मह पेख्यो खट मह पेख्यो, दस अष्टी सिमरताए। सब मिल एको एक।

अगह अगह बेअंत स्वामी नह कीम कीम कीमाय जन नानक तिन कै बल बल जाइय जह घट प्रगटी आए पैरो महला पंजवा निकट बुझै सो बुरा क्यों करै बिख संचै नित डरता फिरै है निकटे अर भेद ना पाया बिन सतगुर सब मोही माया नेड़ै नेड़ै सब को कहै गुरमुख भेद विरला को लह रहाओ निकट ना देखै पर ग्रह जाए दर्ब हिरै मिथ्या कर खाए पई ठगौरी हर संग ना जानिया बाज गुरु है परम पुलानिया निकट ना जानै बोलै कूड़ माया मोहे मूठा है मूड अंतर वस्त दिसंतर जाए बाज गुरु है परम पुलाए जिस मस्तक कर्म लिखिया ललाट सतगुर सेवे खुले कपाट अंतर बाहर निकटे सोए जन नानक आवे ना जावे कोय भैरो महला पंजवा जिस तू रख है तिस कौन मारै सब तुझ ही अंतर सगल संसार कोट उपाव चितवत है प्राणी सो होवै जे करै चोज विडाणी रख हो कृपा तार तेरी शरण तेरा दरबार रहाओ जिन सेव्या निरपौ सुखदाता तिन पौ दूर किया एक पराता।

जास जपत पूरन सब काम रहाओ, जाकी दृष्ट दुख डेरा टहै, अमृत नाम शीतल मन गहै, अनक भगत जाके चरण पुजारी, सगल मनोरथ पूरन हारी। खिन मह ऊने सुपहर भरिया, खिन मह सूके कीने हरिया, खिन मह निथावे कौ दीनो थान, खिन मह निमाणे कौ दीनो मान, सब मह एक रहया पर पूरा, सो जापै।

तपत बुझी पूर्ण सब आसा, मिटे अंधेर पय परगासा। अनहद शब्द अचरज बिस्माद, गुर पूरा पूरा प्रसाद। जाको प्रगट पये गोपाल, ताके दर्शन सदा निहाल। सर्व गुणा ताके बहुत निदान,

उचेते उचा जा का थान, कोट अगा मिट है हर नाम, तिस सरनाई सदा सुख होए, कर कृपा जाको मिले सोए रहाओ, जाके कर्तव लखे ना जाहे, जाका परवासा सब कट माहे, प्रगट पया साधु कै संग, भगत आराध है अन दिन रंग, दे दे तोट नहीं पंडार, खिन मैं थाप ओथा पनहार, जाका हुक्म न मिटे कोए, सिर पात साहा साचा सोए, जिसकी ओट तिसे की आसा, दुख सुख हमरा तिस ही पासा, राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा, पैरो महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन कौ संबंध चित आया, बूझ बैराग करे जे कोए, जन्म मरण फिर सोग न होए, बिख्या का सब तंद पसार, विरले कीनो नाम आधार रहाओ, त्रिविद माया रही ब्याप, जो लपटानो तिस दुख संताप, सुख नाही बिन नाम ते आए, नाम निदान बड़भागी पाए, स्वांगी स्यो जो मन री जावै, स्वाग उतारिया फिर पछतावै, मेघ की छाया जैसे बर्तनहार, तैसो परपंच मोह बेकार, एक वस्त जे पावै कोए, पूर्ण

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

आओ जन्म हम कालक तोवे सो कहो टल गुर सेविए एहनस सहज सुभाए दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाहे।

सच सच पावे। आनंद अनदिन हरख साचा, दुख किल विख पर हरे। सच नाम पाया गुर दिखाया, मैल नाही सच मने।

का नाम संग उजियारा जहां पंथ तेरा को नान सियानू हर का नाम ते नाल पछानू जय मां भ्यान तप्त बो काम तै हर के नाम की तुम्हें।

प्रव्याप नानक तेजन सह समात सुनिंदा कैसे मार्ग पावे कर गहले ओ निभावे कहां बुझारत बूझे डोरा निस्कहिए तो संजय भोरा कहां विष्णु पद गावे गुंग जतन करे तो विसुर भंग कै पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तू आओ सुगवन करतार करना में दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे संसा सो आवे ना चीत जो बैराए तासो प्रीत बलुआ के ग्रह पीतर वसे अंधकेल माया रंग रसे दृढ़ कर माने मने प्रतीत काल न आवे मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लो त्रोह याहू जुगत बयाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर कर्म

चेते ऊचा भगवंत। सर्व समग्री तुमरे सूत्र धारी, तुम ते हो सो आज्ञाकारी, तुमरी गत में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुरबानी। श्लोक देनहार प्रशुण कह लागे आन सुहाय,

तमु राघो काम करे जिस ठाकर से ना ही चारा ताको की जय सात नमस्कारा जाके मन लगा प्रमीठा सर सुख ताहु मन बूठा जे जने अपना हुक्म मनाया सर थोक नानक तिन पाया आगनंद साहु अपनी दे रास खात पीत बरते अंद उलास अपनी अमान कशबौर साहुले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आवी खोवे बौर उसका विश्वास न होवे जिसकी मस्त से आगे राखे प्रभु की आज्ञा मन ने माथे उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सर पर होवत जान रेत वीर की छाया सुन रंग लावे ओ मिनसे ओ मन बजदावे जो दिसे सो चल नहाल लब डरे तय अंध अंधार मटाओ से हो जो लावे ने ताको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाए मिथिया तन तन कुटम्ब सवाया मिथ्या हमे ममता माया मिथ्या राजोन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती असमस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता मिथ्या त्रो मोह अभिमान मिथ्याया पशु पर कर्त कुमान आस्थिर भक्त साध की शरण नानक जब जब जीवे हर के चरण मिथ्या सर्वन परनिंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्व कुहरे मिथ्या नेत्र पिघत पर तिरया रूपाद मिथ्या रसना भोजने अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को धावे मिथ्या मन पर लो लुआवे मिथ्या तन नहीं पर पुकारा मिथ्या वासलेद विकारा बिन बूझे मिथ्या सब भय सबल दे नानक हर हर नाम ले बिरथी साकत की अर्जा सच बिना कहो दसुचा

जे प्रसाद तू चार बिहारी तिस प्रको साज साज तारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात।

जैसे सूर सर्व को सोग ब्रह्म ज्ञानी कह दिश समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कह धीरज एक ज्यो वसदा को खोदे को चंदन ले ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यो पाव का सह सुहाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैं न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कह मन होए प्रगास जैसे धारे उपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सतर समान ब्रह्म ज्ञानी कह नाय मान ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पै नानक जिन प्रव्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल गिरी नाथम रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सबे ऊपर मैं ब्रह्म ज्ञानी तेक्ष पुराना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदर सी ब्रह्म ज्ञानी की दृश्यमृत वर्षी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युक्ता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपर्यास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाहा

अनंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्या ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाइय ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये ब्रह्म ज्ञानी को खोज जाय महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी कह सकल मन माए ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाए आखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता ब्रह्म ज्ञानी सत जीवे नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुग जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब उपराध ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार

रचना प्रवृचि बावध्यान प्रकार अष्टपदी कई कोड होए बुजारी कई कोड चार व्यवहारी कई कोड पै तीर्थवासी कई कोड बन भरमे उदासी कई कोड वेद के स्रोते कई कोड भी स्रोते कई कोड आत्म ध्यान तहरे कई कोड कव का विचारे कई कोड नवतन नाम त्यावे नानक करते का अंत न पावे कई कोड भय अमानी कई कोड अंध ज्ञानी कई कोड कृपन कठोर कई कोड भैगातम निकोर कई कोड परदर कोयरे कई कोड पर दुख न करे कई कोड माया शरमाए कई कोड परदेश परमाए जित जित लावो तित लगना नान करते की जाने करता रचना कई कोड सिद्ध जति जोगी कई कोड राजे रस भोगी कई कोड पंखी सर्पो पाए कई कोड पाथर बिरख निभ जाए कई कोड पौन पानी बे संतर कई कोड देश भूमंडल कई कोड ससिर सूर नखत्र कई कोड देव दान मिंदर सिर छतर सगल समगरी अपने सूत धारे नान जिस जिस भावे तिस तिस निस्तारे कई कोड राज तम साध कई कोड वेद प्राण सिमरत शास्त्र कई कोड किए रतन समंद कई कोड नाना प्रकार जंत कई कोड किए चिरजीवे कई कोड गिरी मे स्वर्ण तीवे कई कोड जाके न विसाज कई कोड भूत प्रे सूकर मिनगा सब ते नेरे सबों ते दूर नानक आप लिप्त रहा भरपूर कई कोड पताल के वासी कई कोड नरक सुर निवासी कई कोड जन्मे जीवे मरे कई कोड बोजोनी फिरे कई कोड बैठ ही खाए कई कोड काले थक पाए कई कोड किए तनवंत कई कोड माया में चिंत जय जय पाणा तै तै राखे नान सब कुछ प्रभ के हाथे कई कोड भय बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोड प्रभ को खोजंते आत्म में पार ब्रह्म हंते कई कोड दर्शन प्रप्यास तिन को मिलियो प्रभ अविनाश कई कोड मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हुए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा तन धन कई कोड खाणी अरखंड कई कोड आकाश ब्रह्मंड कई कोड होए अवतार कई युद्ध कीनो विस्तार कई बार पसरियो पसार सदा एक ओंकार कई कोड कीने मौ भांत प्राप्त हुए प्रभ माए समाज ताका अंत न जाने कोय आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोड पार के दास तिन होवते आत्म प्रकाश कई कोड तत के वे ते सा निहारे को नेत्रे कई कोड नाम रस पीवे अमर पै सत सदी जीवे कई कोड नाम गुन गावे आत्म रस सह समावे अपने जन को सास सास समारे नानक वे परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण करण प्रवे कह दूसर नाई को ए नानक तिस बलिहार ने जल थल में अल सोए अष्टपदी करण करावण करने जोग जो तिस भावे सोई होग खिन में थाप थापण हारा अंत ने छपारा बारा हुक्मे धार धर रहावे हुक्मे उपजे हुक्म आवे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनकरंग प्रकार कर कर देखे अपनी वड्याई नान सब मै रहा समाये प्रभावे मानु गत पावे प्रभावे ता पाथर त्रावे प्रभावे बिन सास राखे प्रभावे ता अरगुण भाके प्रभावे ता पत धारे आप करे आपन बेचारे दुआ सरिया का आप स्वामी खेले विकसे अंतर जामी जो पावे सो कार करावे नान दृष्टि अवनावे कहो मनुख ते क्या हुए आवे जो तुझ पावे सोई करावे इसके हाथ हुए ता सब चले जो तुझ पावे सोई करे अनजान भी क्या मेरे चे जे जानते अपना बचे पर मैं पूला दे दिस तावे निमकमाए चार कुंड फिर आवे कर कृपा जिस अपनी भक्त दे नान ते जन्ना मिले खिन में नीच कीट को राज पार ब्रह्म गिनवाज जाका दृष्ट कसुना आवे तिस तत्काल दै तिस प्रटावे जाको अपनी कर विकसीस ताका लेखा नाक ने जगदीश जियो पिंड सब तिसकी रास कर कर पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अपनी बंट आप बनाए नानक जीवे देख बढ़ाए इसका बल नए सहात कर्ण करावण सर को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस भावे सोई फुंतियो कबू ऊंच नीच में बसे कबू सो घर करंग हसे कबू निंद चिंद व्यवहार कबू बकास प्याल

कारण सदी रहसमाय आप उदेश समझे आप अपेरच सबके साथ आप कीनो अपन विस्तार सबके इसका वो करने हार।

सच वरते साचा पसार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नान सोजन सत समाता श्लोक रूप ना रेख ना रंग किस त्रैगुण ते प्रभिन्न तिसे बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न अष्टपदी अवनासी ब्रह्मन में राग मानू की तू भी त्याग तिसते परे नहीं कुछ कोहे सर्व निरंतर एक सोहे आपे बिना आपे दाना गैर गंभीर गीर सुजाना

पूरे के गुण गाओ अष्टपदी। पूरे गुर का सुनो उपदेश पार ब्रह्म निघ्न कर भेक साथ साथ सिमरो को बिंद मन अंतर की उतरे चंद आसन नित्य त्याग को तरंग संजना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साह संग अग्न सागर तरो अर्तन के पर ले भंडार नानक गुरपुर नमस्कार।

मैं विसर ना जाई। तीर्थ नावा जित भावा बिन पाने के नाई करी, जेती सिरठ उपाई वेखा बिन करमा के मिला लई।

तुम्हें विसर ना जाई। जे जुग चारे अरदा होरद सुनी होए, नवा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोए। चंगा नाव रखाई कै जसकर जगले, जे तस नदर ना आवै तां वात ना पुछै के।

मन कोय। मन न स्वरत होवे मन बद्ध, मन न सकल्प मन के स्वद्ध, मन न मोह चोटा न खाए, मन न जम का साथ न जाए।

भव है न भिख। ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन कोए। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पाव है अंदर गय मान पंचे सो है अंदर राजान पंचा का गुरु एक ध्यान। जेको कह करे विचार करते कह करना है नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जनसूत। जेको बुझा हुआ सचियार तब लै ऊपर किता पार धरती होर परै होर तिसे पार तलै कवन जोर। जी जात रंगा के नाम सबना लिखिया बड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया किता होए।

असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख रंध मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंग दाचार असंख सूर मोह पाख सार असंख मौन लिवलाय चार

निरंकार असंख्य नाम असंख्य थाव अगम अगम असंख्य लो असंख्य चरपार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गा अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग

तुम्हारा ना कोई ध्यान करता सिरडी को साधे आपे जाना सोई केव करे आखा के सलाही क्यों वरनी केव जाना नानकी आखन सबको आख एक दो एक सियाणा।

सह सुय अठारह कहन कते बास लोक तात लेखा हुए त लिखी है लिखे हुए विनाश नानक वड्डा आखी है आप जाने आप साला ही साला ते सुरत न पाईया नदियां ते वा पवे सुमंद न जानिए सुमंद सा सुल्तान गिरहा से ते माल तन

कोई जेको खाए के आखण पाए ओ हो जाना जितिया मोह खाए आपे जाना आपे दे आखें से पे के जिसनों

बोलवे गाड़ ता लिखिए सिर गावा रंगावार सो दर के हो करके हो जित बै सिर्फ सुमाले वाजे नादने का संखा के ते वावन हारे के ते राग परि स्यो कहियन के ते गावन हारे

लिख ले धर्म विचारे गावै सर ब्रह्मा देवे सोहन सदा सुवारे गावै इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दर नाले गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे।

सुरगामा छुपाया ले। गावा रत्न उपाय तेरे अर्थर तीर्थ नाले, गावा जोत महाबल सूरा गावा खानी चारे, गावा खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे, सही तुदनों गावा जोत पावन रते तेरे भगत रसाले।

तव कर्मे कर्मे होय विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथ सोन पंच परवान नदरी करम पवे निशान कत बकाई उत पाए नानंगे आ जाप जाए तरम खंड काय हो तरम ज्ञान खंड काय आख हो करम केते पौन पाणी वै संतर केते कान महेश केते ब्रह्म घाट करिए रूप रंग के वेश केत्या करम भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश

चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दान्ने चतर चक्र जानने चतर चक्र भर्ती चतर चक्र भर्ती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे।

ना जितरे ना मित्रे परे हैं पवित्रे प्रति से अधि से अधिर से अकिर से भक्ति छंद वाय प्रसाद कत्ते के शिज देसे के बिज भेसे के गंज करमे के भंज भरमे के बिज लोके के सोके के वदूत बरने के विभूत करने के राज प्रवाह के धर्म तुजा है के शोक भरने के सर्वा भरने के जगतन कृतिय के शत्रन क्षत्रिय के ब्रह्मन स्वरूपे के नौ अनुपे के आद देव के आप पेवे के चित्र महीने के दिन के रोजी रजा के रही मेरा हाके के पाक भी के गै बुल के अबुल गुनाह के शहान शाह के कारण कुनंद है के रोजी दहन है के राज करी मैं के कर्म करी मैं के सुरंग कली है के सुरंग दली है के सर्वत्र मानी है के सर्वत्र दानी है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौने के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेस है के सर्वत्र राजे के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेस है के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेस है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राजे के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भुख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेस है के सर्वत्र मानी है सदैव प्रधानी है के सर्वत्र जापिया है के सर्वत्र थापिया है के सर्वत्र भान है के सर्वत्र मन है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंकल लीमे के परम फहीमे के आकल अलामे के साहेब कुलामे के हुसन वजू है तुम मामल रजू है हामे सुल सलामे सलीक मदामे गनीमल शिकिस्ते गरीबल प्रस्ते बुलंदल मकाने जमीनल जमाने तमीजल तमामे रजूल निदाने हरी फल जीमे रजायक जकीने अनेक तरंग हैं वेद हैं पंग हैं जी जल नवाज हैं अग्नि मलख राज हैं नृक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं प्रभुक्त प्रवाह हैं सुयुक्त सदा हैं सदैव स्वरूप हैं भेदी अनूप हैं समस्त उपराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्त सलाम हैं सदैव काम हैं निर्बाध स्वरूप हैं गाद हैं अनूप हैं ओ अंगाद रूपे नाद स्वरूपे नंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाम हैं तेरे वर्गं करवादे गंजे गादे सुभंग सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपुक्त स्वरूप हैं शिष्य हैं शूत हैं के नरकम प्रणास हैं पृथ्वी और प्रवास हैं नुक्त प्रवाह हैं सदैव सदा हैं विपुक्त स्वरूप हैं परयुक्त अनूप हैं नुक्त सदा हैं विपुक्त प्रवाह हैं अनुक्त स्वरूप हैं परयुक्त अनूप हैं चाचरी छंद अपंग है नंग है भेख है लेख है परम है कर्म है नाद है जुगाद है जय है बह है भूत है दूत है नास है उदास है दंद है बंद है

अनित्य सुनित्य जाते जाते चर प्रछन्न त्वय प्रसाद सर्वहंता सर्वगंता सर्वख्याता सर्वज्ञाता सर्वहर्ता सर्वकर्ता सर्व प्राण सर्व त्राण सर्व कर्म सर्व धर्म।

सदा सरसात अगाध स्वरूप निर्बाध विभूते नंगी नाम त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूप सर्वंगी नूपे न पोतरे न पुत्रे न सतरे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते न साकंसरी कै मितो अमी कै सेम प्रवाह है जय है जा है भक्ति छंद व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है मे सलसलाम है समस्त कलाम है के साहिब दिमाग है उस चिराग है के कामल करीम है के राज कर रहीम है के रोजी दहन है के राज कर रहन है क्रीमल कमाल है के उसल जमाल है गनीमल खराज है ग्रीफल निवाज है हरीफल स्किन है रासल बकिन है कलंकन बनास है समस्तल निवास है गंजल गनीम है रजाय कर रहीम है समस्तल जुबा है के साहिब करा है के नरकम प्रणास है के नरकम प्रणास है बह तुलवास है के सर्वल गवन है मेसल रोन है तमावल तमीज है समस्तल अजीज है तमावल तमीज है समस्तल अजीज है परम परमीस है समस्तल अधीस है देश लड़ेख है मेसल भेख है जमीन जमा है मी कलमा है क्रीम कमाल है के जुर जमाल है के अचलम प्रकाश है के मितो सुभाष है के अज बसरूप है के मितो विभूत है के मितो बसा है के आत्म प्रवाह है के अचलंग अनंग है के मितो अभंग है मद भार छंद वाह प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण बदाम हर भर गंज हर नर प्रभंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर खंड भर नर मंड अनुभव नास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल तल मदाम आंश जंग आसन भंग उपमा पार गत मित धार जल थल मंड दिस बिज भंड जल थल महंत दिस बिज बेअंत अनुभव नास तिरता त्रास जान बाहो एक सदाओ ओ अंकार आद कनी कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरवर काल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंश जगात आज न बात

ना करते हैं, अकिरता करते हैं, धरणी तिरते हैं, हम तेसुर हैं, परमेश्वर हैं, अकिरता करते हैं, मृत मृत हैं, निर्णायक हैं, खलकायक हैं।

नमो परम ततंग स्वरूपे नमो जो जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने।

सुना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख ले ना लेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मिलेंगे श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर पार बड़े पर यार अवचारे सार की धार पछैया तूर्त देश मलिंद मवासन माते जान के मान मलैया

देव नंदन सचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव ते जल में थल में पल ही पल में सब धाव तपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जय तुन पापन के वो पुंज खपेंगे।

राजबरेंगे। ब्राह्मे सर्व संसजी पद अंत भजे जम पास परेंगे। जे नर श्रीपद के प्रस भक्त नर फेर न दे तरेंगे। कहा प्यो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो। नाथ फिरियो लिए सात समुद्रन लोग गयो पर लोग आयो। बास कियो विख्यान सो बैठ के ऐसे ही है सुबह बतायो। साच को सुन लियो सवे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। काहू ले पान पूछ तरियो सिर काहू नलेंगरे लटकायो। काहू लख्य और वाची सामे काहू पछा को शीस निवायो। को बतान को पूछते हैं पस को मृतान को पूजन तायो। और क्रिया और जो सभी जग श्री

काल काकिया तमासा जमन काल जोगी सब कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताय हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन बजायो आदि अंत कै अवतारा सोए गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसी को मारी सकल प्रजा जने आप सुवारी सिवकन को सब गुण सुधियो शत्रन को पल मोद कियो गटगट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर प्रशांत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दिशकर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एके की पीर पछाने घट घट के पड़ पड़ की जाने जबद कर करा कर तारा प्रजा धर तब दे अपारा जबा कर कर तो कबू तुम मैं मिल दे तर सबू

सुन पियो शंकर कैटा सगरी सिज दिखाए चंब आज जुगा सुरु स्वंब आप रक्षा मेरी तुम करो सिखो वार सिख संगरो दुष्ट दे उठव दुद पाता सकल मलेश करो रण का

0: सत्य त्रि सिर्फ सत्य सला सत्य त्रिकुद सत्य पातशाह नानक सत्य हैं सच जो मर्द में सो कतन कत महला पहला
1: वड़ी वड़े आई जा वड़ा ना हूं वड़ी वड़े जा सच ने आऊं वड़ी वड़े जा नीचो था हूं वड़ी वड़े जाने हला वड़ी वड़े पूजे सब पाओ

सदा कुर्बान किया गुरु विटो जिस दया वडियाईया कह नानक सुनो संतो शबतरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शबत कर सुभाग कर सुभाग शब्द वाजे कलाजित करतारिया पंच दोत तुद वस किते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिनको से नाम हर कह लागे कह नानक तंस खुआ तित कर अनवद वाजे आनंद सुनो वड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल

है। गुर ज्ञान साचा थान तीरथ दस पुरब सदा दसाहरा, हो नाम हर का सदा जाचाऊ देहो प्राब तरनी तरा, संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना, गुर वाक निर्मल सदा चानन नित साच तीरथ मज्जना, साच न लागे मैल क्या मल धोइए, गुण है हार परोए किस का रोइए।

साचा दुख किल विख पर हरे सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने संगत मीत मिला पूरा नावणो गावे गावन हार शब्द सुहावणो सालाहे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते पिर संग पावे सहज नावे बेणी ता संगम सत सते आराधे कंकार साचा नित दे चढ़े सवाया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया कहन कहे सब को ए केवड आखिया हो मूर्ख नीच अजान समझा साखिया सच गुर की साखी अमृत भाखी तित मन मानिया मेरा कूच करे आवे बिखला दे शब्द सच्चा गुर मेरा आखण तोटना भगत भंडारी भरपुर

एक संग पंच बरंगन संगे लाप है आठो नंदन प्रथम राग पैरो वै करही पंच राग नी संगे उचरही।

प्रबल चंड कौ सक्यो वारा खो खट्यो पौरा नद गाय अष्टमाल कौ सक संग लाई।

जी को मन जाने मन कोय मना सुर तुवे मन बुद्ध मना सगल भवन की सोदा मना मोह चोटा न खाए मना जाम के साथ न जाए असा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय मना मार्ग ठाक न पाए मना पात स्यों प्रगट जाए मना मग न चले पंथ मना धर्म सिती सुन बंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय मने पावे मुख द्वार मने परवारे साधार मने तरे तारे गुर सिख मने नानक भवे ना भिख ऐसा नाम निरंजन हुए जे को मन जाने मन कोय पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान पंच सुह दर राजान पंचा का गुरेग ध्यान

निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कुमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश।

निरंकार असंख नाव असंख थाव गम गम असंख लो असंख सिर पार हो अखरी नाम अखरी सोलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा

जावा एक वार जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिय हाथ पैर तन देह पानी धोते उतर सखे मूत पलीती कपड़ होए दे साबूण लइए ओ धोए तो

कथियो अकथ कहानी ए मन चंचला चतराई किने ना पाया चतराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जिन एत भरम पुलाया माया ता मोहनी तिने कीती जिन ठगोली पाईया।

इहो कुटुंब तुझे देखदा चलै नाही तेरे नाले साथ तेरे चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाईऐ ऐसा कम मूले ना कीचै जित अंत पछोताईऐ सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाले कह नानक मन प्यारे तू सदा सच समाले अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया अंतो ना पाया किने तेरा अपना आप तू जान हे जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखाण है आखे ता वेखे सब तू है जिन जगत उपाया कह नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी अजंत सब तो दाए एक वेख परसन आया लाभ लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पहाया कह नानक जिसनो आप तुठा तने अमृत गुर ते पाया भगतां की चाल निराली चाला निराली भगतां केरी बिख मार्ग चलना लाभ लोभ अहंकार तज त्रिसना बहुत नाही बोलना खन्यो तिखी वालों निकी एत मार्ग जाना गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी कह नानक चाल भगतां जुगो जुग निराली जो तू चलाए तिवे चला स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जिव तू चलाए तिवे चला जिना मार्ग पावे कर कृपा जिन नाम लाए से हर हर सदा ते आवहे जिसनों कथा सुनाहे अपनी से गुरद्वारे सुख पावे कह नानक सच्चे साहेब जो भावे तिवे चलावे इस विला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहिला सतगुरु सुनाया इहो तिन कै मन वसिया जिन धुरों लिखिया आया एक फिरे कनेरे करे गल्लां गल्ली किने ना पाया कह नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया पवित होए सेजना जिनी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहत सुपवित संगत सुबाइया कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज न उपजै विण सहज सहसा न जाए नह जाए सहसा किते संजम रहे कर्म कमाए सहसे जीव मलीन है कित संजम धोता जाए मन तो वो शब्द लागो हर सियो रहो चित लाए कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै इहो सहसा एव जाय जीओ मैले बाहरों निर्मल बाहरों निर्मल जीओ ता मैले तिन जन्म जुए हारिया ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे जो बेतालिया कह नानक जन सच तजया कूड़े लागे तिन जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बाहरों निर्मल बाहरों ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचे नाही मनसा सच

गुरु सेती सन्मुख होवै, होवे तां सन्मुख सिख कोई, जियो रहे गुर नाले गुर के चरण, हिरदय त्याए अंतर आत्मा समाले, आप छड सदा रहे परणे, गुर बिन अवर न जाने कोई, कहे नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए। जे को गुर ते विमुख होवै, बिन सतगुर मुक्त न पावै, पावे मुक्त न होर थे कोई, पुछो बवेकियां जाए, अनेक जूनी भरम आवै, बिन सतगुर मुक्त न पाए, फिर मुक्त पाए लाग चरणी, सतगुरु शब्द सुनाए, कहे नानक विचार देखो, बिन सतगुर मुक्त न पाए, आवो सिख सतगुरु के प्यार हो, गावो सच्ची बाणी, बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी, जिन को नदर कर्म होवै, हिरदे तिना समाणी, पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जप्यो सारंग पाणी, कहे नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तां कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी, कह दे कच्चे सुन दे कच्चे, कच्ची आख वखाणी, हर हर नित करे रसना, कहया कछु न जानी, चित जिन का हिर लिया माया, बोलन पैर वाणी, कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी, गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ, शब्द सेती मन मिलिया सच्चे लाया पाओ, आपे हीरा रतन आपे जिसनों दे बुझाए, कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ, सब सकते आप पाए कै करता आपे हुक्म वरताए, हुक्म वरताए आप वेखे गुरम किसे बुझाए, तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए, गुरमुख

मनु क्यों विसारिये ए वड़दाता, जे अगन में आहार पहुंचावे। उसनों कहो पोहे ना सके, जिसनो अपनी लेव लावे, अपनी लेव आपे लाए, गुरमुख सदा संभालिए। कह नानक ए वड़दाता, सो क्यों मनो विसारिये। जिस

तू अनरस राच रही, तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होर तिकित जिचर, हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पिए, हर रस बो न तृष्णा लागे आए, ओह हर रस करमी पाइए सतगुर मिले जस आए, कहे नानक होर अनरस सब विसरे, जा हर वसै मन आए, ए श्री रा मेरे आ, हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया, हर आपे माता आपे पिता जिन जियो अपाए जागत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया ता चलत होवा चलत नदरी आया, कहे नानक श्रेष्ठ का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग मह आया, मन चाओ पिया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया, हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख न व्यापए, गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना पिर जापए, अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम

क्या तद कर्म कमाया के कर्म कमाया तद शरीरा जा तू जग मह आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया कह नानक इहो शरीर परवान होवा जिन सतगुर स्यों चित

तर रख कै वाजा पौन वजाया वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गोपत रखाया गुरुद्वारे लाए।

छुट्टे परवार स्यों सब जगत छड़ाया गुर प्यारे हर सेविया गुर धन गुर धनो गुर हर मार्ग दसिया।

अखंड पढ़ रही सीख वाहे गुरु जी कवे वाच बेनती चौपाई हमरी करो हादे रचा पूर्णो ए चित की इच्छा ताव चरण मारे हमारा अपना जान करो बदबारा हमरे दुस्वे तुम गावो आपा दे मोहे बचाओ सुखी विजय मोर परवारा सेवक सिख सवे करतारा मोर इच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आसंगरिय पूर्ण होए हमारी आसा तुर पहन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बरचाऊं सो तुम ते पाऊं से सिख हमारे तारिय है चुन चुन सतरा मारे मारिय आप हा दे मुझे वरिय मन काल का त्रासन वरिय हूँ जो सदा हमारे पच्छा श्री तुझ जो करे और अच्छा राख लियो मोय राखण हारे साहे संत सहाय प्यारे दीन बन दुष्ण के हंता तुम हो पुरी रसकंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिव जीव अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सगल काल का किए तमाशा जमन काल जोगी सब की ओ वेद राज ब्रह्मा ज्योति ओ जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताय मारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जश्चन बजायो आदि अंत के अवतारा सोए गुरु समझो हमारा नमस्कार तिजी को मारी सगल प्रजा जिने आप सुवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोहब्बत की हो कट कट के अंतर की जानत भले भरे की पीर पछांत चीटी दे कुंजर स्थूला सब पर कृपा दिश कर भूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने।

पारंग पे राव के पुपा हंड जेर से खान मोरा दिन कम फूल राजा बैठा कम सुन पे शंकर काटा सगरी से दिखाए चंबव आज वासरु स्वंभव आप रक्षा मेरी तुम करो सिख वार सिख संगरो दुष्ट जिता उठवा तुझ पाता सकल मनेश करोड़ काता जे तुझा सड़नी परे तिनके दुष्ट दुख तुम मरे पुरुष जीवन पर परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक

चाहे कृपा करी हम पर जब माता ग्रंथ करा पूर्ण सवराता कलवे सगल देखो अर्था दुष्ट हो किन कोचा करता श्री अस्तु जापै दयाला पूर्ण करा ग्रंथ काला मन वंशित फल पावे सोई दुख न तिसे व्याप्त कोई अड़ल सुने गुंग जो जाए सुरसना पावे।

0: सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र गोद अंदर सज बैठे पवित्र आत्मा गुरु खालसा साह संगत जीओ, आओ सब तो पहला कलगी वाले पातशाह महाराज दी बख्शिश दोहराइए। कोई भी रसना वाजी ना रहे, सब माई भाई फतेह दे सिमर नाल जुड़ो और उस सिमरन दे मिले बल विचों दासरिया नूं कुछ बोलन दा बल बश करो। अद साहबां नूं सिर झुकाओ ते गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा
1: खालसा
0: वाहेगुरु जी की
1: फतेह।
0: सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम वखाणी है,
1: वखाणी है
0: एको नाम हुक्म है नानक सतगुरु दिया बजाए जियो। साहब कहिंदे सेई सुंदर सोहणे साध संग जिन बहणे, ओ मनुख बड़े सोहणे लगदे आ जेड़े संगत विच आ के बहिंदे आ। जह सतगुर तह सत संगत बनाई, तुमरी ही किरपा ते भयो साध संग। महाराज तुहाडी वड्डी किरपा होई आ ते संगत दियां घड़ियां दा समा तां प्राप्त होया। तुमरी ही किरपा ते भयो साध संग, एहो काज तुम आप कियो। महाराज जी संगत च लिआउण वाला संगत च बिठाउण वाला कार्ज तुसी आप कीता जी। पापी मनुख नूं अपराधी मनुख नूं कोई भी अपने लागे नहीं जे बिठाउंदा। धन्नवाद करो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा जेड़े सानू अपराधियां नूं अपनी गोद विच लैके बैठे आ। साडे तो पहला अति सत्कारयोग महापुरश बाबा सेवा सिंह जी आप जी नाल गुरमत विचारां सांझियां कर रहे सन। आओ जिन्ना क समा मेरे सतगुरु होर बख्श करदे आ, देवत्यां वांग समाधियां ला के बैठो और ये अरदास जरूर करियो कि महाराज जिथे तुहाडे बचन सानू ए सुन दा सुभाग समा प्राप्त होया उथे आप जी दे बचन सानू किते कमाउण दी भी जाच आ जे। गावया सुनिया तिन का हर थाए पावै, जिन सतगुर की आग्या सत सत करमानी। गावया सुनिया उन्हां दा प्रवान होना जिन्हां गुरु के बचन सुन के ते उहदे उत्ते चलण दी कोशिश कीती। आप जी रात दे दीवाना विच साहिब गुरु कलगीधर पातशाह महाराज दा प्रसंग सरवण कर रहे सी कि भाई मनी सिंह दे नाल मतावां किस तरह दिल्ली नूं गईआं और किस तरह सतगुरु पातशाह दा विछोड़ा पिया। इधर कलगियां वाले पातशाह महाराज चमकौर दी जंग जित के माछी वाले दे कौतक करदे होए सतगुरु पातशाह मुक्तसर विच बहुत वड्डी दुश्मनां नूं हार दे के ते श्री दमदमा साहब दी धरती ते पहुंचे। इधर मतावां नूं भी भाई मनी सिंह जी लै के दिल्ली तों दमदमा साहब पहुंचे। भावें मतावां नूं पता लग चुका सी कि साडे पुत्र शहीद हो गए आ, पर मां दी ममता बड़ी गहरी हुंदी आ। जदों सतगुरु पातशाह महाराज दरबार विच पहुंचियां ते महाराज जी नूं बेनती कीती, महाराज दो साहबजादे तुहाडे ऐस बन्ने खलोते हुंदे सी, दो ऐस बन्ने खलोते हुंदे सी, अज चौहां दे विचों एक भी नजर नहीं आउंदा, महाराज साडे पुत किथे आ। ते सतगुरु पातशाह ने फिर तुहाडे वल्ले उंगल करके क्या की सी के इन पुत्रन के सीस पे मैं वार दिए सुत चार, चार मुआ तो क्या हुआ जीवत लाख हजार। आ जेड़े बैठे मेरे जीते जजार, ए मेरे जोरावर ते फतेह सिंह। महाराज ने अपने पुत वार के सानू अपने पुत्रा दा मान दिता सी। अज गुरु गोबिंद सिंह ने साडे पुत्रा विचों अपने पुत्रा दे दर्शन करने होण ते तुहानू पोटियां ते गिन वाले परिवार मिलणगे जिन्हां दे घर सिखी दी जड़ लगी आ। नहीं ते हालात पंजाब दी धरती ते इहो जे हो गए आ, तुसी जिधर नूं वेखोगे तुहानू कन्ना च मुरकियां वाले बड़े मिलणगे, तंबाकू नाल दंद खाधे चार चफेरे वेख लोगे, सिरां ते टोपियां वाले बेअंत वेखोगे, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। 10-10 ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗੀ ਸਿੱਖੀ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤੇ ਵਿਸਦੇ ਤਿਸ ਤੇ ਕੌਣ ਪਿਆਰਾ,
1: ਕੌਣ ਪਿਆਰਾ?
0: ਉਹ ਜੇ ਮਾਂ ਹੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਯਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਬਚਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਜੇ ਵਾੜੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ? ਆਓ, ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਾਵਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਤਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣੀਏ ਲੈਣਾ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਵਿੱਚ।

0: धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, पूरे सतगुरु कोट ब्रह्मंड के ठाकुर स्वामी, दशा पाछाई दी जागदी जोत, धन धन गुरु रामदास साहिब महाराज, जिठे सभ्य थाओ नहीं तुद जिहा, जिन्हां दे सतगुरां दे अपने प्यारे कीर्तनीए, जिन्हां दी असी की वड्याई कर सकते हाँ। साढ़े वड्डे भाग हैं कि असी उन्हां दे बच्चे हाँ। साडा रिश्ता ऐसे महान गुरसिख नाल, ऐसे चढ़दी कला वाले आत्म प्रगासी जिन्हां दी रूह सी, उन्हां नूं बचपन तो देखिया, जिहड़े हर वेले प्रगाश दे विच आत्म विकास दे विच एक खेड़े दे विच रहिंदे सन, हर वेले ओ खेड़ा ऐसा है कि जो हसी विचों नहीं आता। हसी अते रोना है दो चीज़ है, इस तो तीसरी चीज़ है उसनु कहिंदे हन धन गुरु अमरदास साहिब जी महाराज, आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जाणिया। हसी अते रोना, इस तो तीसरी चीज़ है आनंद। आनंद जिसनु प्राप्त होंदा है उसका आत्म विकास होंदा है। आत्म विकास केवल परमेश्वर अते उसका नाम बख्शदा है। ओ असी बचपन तो ही पिता जी दे चेहरे तो देखिया है, बचपन तो ही ते देखते सन, असी भी हसते हाँ सब, पर अजे ओ नहीं, ओ एक खेड़ा सी। भावें लख तकलीफां कदी भी आ जान, कुछ भी आ जावे, वो हमेशा खिड़े रहे, हमेशा खिड़े रहे। खिड़िया उही रहिंदा है जिसते हिरदे दे विच सतगुरां दे नाम दी उस पारस कला छू जावे। नाम दा पारस, नाम दे पारस दी गीटी जिहदे हिरदे विच वस जावे, वो फिर जिसनों भी मिलता है उसनों भी खुशहाल अते उसनों भी विकास बख्शदा जांदा है। ते वो साड़ी कोई वड्याई नहीं, दास ने कुछ बोलना नहीं सीगा क्योंकि दास अजे अपने आप नूं इतना लायक नहीं समझदा कि स्टेज दे उत्ते बैठ के कुछ बोलिया जावे, पर फिर भी आप सारे उन्हां दे अपने हो, सारिआं दा तहि दिलों धन्नवाद है। इस गुरुद्वारे की प्रबंधक कमेटी का, गुरद्वारा श्री फ्रीमोंट, गुरद्वारा साहेब फ्रीमोंट के सारे ही जितने ही पतवंते अते प्रबंधक सज्जन हैं, तिना का धन्यवाद। कल सैन होजे की भी स्टेज तो मैं उन्हों का धन्यवाद नहीं कर पाया, इतों कर देना हाँ, उन्होंने भी कमेटी का धन्यवाद। तो सात संगत जी, आप जी का, आप जी गुरु स्वरूप हो, खालसा हो, परमेश्वर स्वरूप हो, आप जी के रब का वासा है, विच संगत हर प्रभ वसै जी। आप जी का वाह तहे दिलों असी धन्यवाद शुकराना करते हाँ। छोटा लफ्ज़ है, आप जी का धन्यवाद है। जितने भी रागी सिंघां ने अज इत्थे भी, कल भी, जिन्होंने हाजरियां भरियां, अज इत्थे भी, सारे का धन्यवाद है। साढ़े तो पहला भाई बेताब सिंह करके गए, हुण भाई जगजीत सिंह जी आणगे, तिन्हां नूं जी आया नूं, अते साढ़े बहुत सत्कारयोग मेरे वड्डे वीर जी, दोनों ही बहुत महान हस्तियां, धन गुरु रामदास महाराज के कीर्तनी भाई साहब भाई गुरमेल सिंह जी पिछे बैठे हैं। अभी छोटे होंगे सके उदों तो इन्हों देख रहे हैं, उदों तो ही इन्ने गुणी, जदों मैं आवाजा भी नहीं वजाना आता सगा, असं उदों तो देख रहे हैं पापा जी नाल, बहुत लंबे समय तो इन्होंने कीर्तन की सेवा निभाई है, तो बहुत निघ माणा है। उत्थे ही वड्डे वीर जी जुझार वीर जी, जुझार सिंह जी बहुत महान तबला वादक, इन्हों वर्गे भी जब तबला वजाते सके तो मैं कन्ना नाल सुनया है, जो कीर्तन करके बाहर आते वड्डे वड्डे तबला वादक, खैर उन्हों का की नाम लेना, वो आके कहते सन, कहते सुनते भाई साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के शेर, कहते अंदर गजदे पे ने, तो कहते तबले वाला भी कोई बहुत महान कहता हस्ती बैठे, देख के ताइए कौन तबला वजा रहा। उत्थे वीर जी जब गाते सन तो ताया जी ने, सिंह साहब गए ने, जसविंदर सिंह जी ने इन्हों का नाम बिजली रखा सी, कि आप जी की आवाज़ बिजली वांगू जाती है, उपर वाजा टप जाते सन। असी बच्चे हाँ, किसी का साढ़े बोल उतने वड्डे नहीं कि किसी का धन्यवाद कर पाइए, बस सतगुरां का शुकराना है वार वार। सतगुर महाराज जी ने जे ऐसे महान महापुरख, महापुरख एक परमात्मा, महापुरख पुरखां का पुरख, महापुरख गुरु, महापुरख जो उस दे नाल नाम दे नाल जुड़ जावे वो भी आम पुरख नहीं रह जाता, वह भी महापुरख। जे ऐसे महापुरखां नाल साडा कुछ मेल होया है, जितना भी समा बीतया है उस समय नू बस रिकलैक्ट करना है, उस दे विचों जो कुछ सेधा मिलिया हैं उसनों हिरदे च वसा के कमाण की कोशिश करनी है। तो साढ़े माता पिता ने सानू गुरबाणी नाल जोड़िया, सानू यही हुण पूरे जिंदगी का एम है, पूरे अंतम श्वास तक जिवें गुरु अर्जन देव जी महाराज जी कहते हैं, जीवत नाम सिमरत रहो जब लग कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग घट सास, तद तक मेरे सास चल रहे हैं सच्चे पातशाह मैं दान मंगता हाँ कि कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग घट सास। भाई गुरदास भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने पापा दे मुँह तो सुनिया सीगा कि भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने कहा कि जब ब्रह्म ज्ञान की भी अवस्था आ जाए ना तद भी यह अरदास करते रहो कि कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग घट सास। सिर्फ आत्म ध्यान दे विच नहीं बह जाना, कीर्तन नाम सिमरन करते रहना है। सतगुरु महाराज जी ने बहुत ही कृपा की है, साढ़े सिर पर मेहर पर हाथ रखन, उन्हां दे लायक बच्चे सतगुरु महाराज जी के लायक पुत्र असी बच्चे सारे गुरसिख बन सकीए। सारे का तह दिलों धन्यवाद बोलद, बहुत भुला हो गई होनगियां जी, माफ़ी बख्शनी। आओ हुण भाई साहब भाई जगजीत सिंह जी आप जी नूं कीर्तन नाल 5 बजे तक निहाल करनगे। सतगुरां दा शुकराना, फतेह बुलाइए गज वज के, वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु सारी साध संगत जीओ, अज दे विशेष दीवान अति सत्कारयोग यानी इंद्रजीत सिंह जी खालसा बॉम्बे वाले ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਾਜਰੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।